साधु। सौ पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह

साहेब संत सहाए प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, नाम शिकार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बन।

हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रण को पल मो भद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी भूज उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत पेन पेन तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूँ फूल राजा हो बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आज जुगात स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार असिख्य संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता, जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल निकट न अहम, रक्षा होए तहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहें निहरे हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध।

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किल विख सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता, श्री अस्तुज पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नति से व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहै सुरस दा पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहें, हो जो या की एक बार चौपाई को कहें, चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस पुन तीन कहिज, भाद्रो सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे, 405 चरित्र समाप्त, मस्त सब मस्त अफजूं दोहरा, दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार, आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम वचन विचार, चौपई मैना गणेश प्रथम मनाओ, किसन बिसन कब

दोहरा हर हर जन दुई एक है, बेबिचार कछ नाहे। जलते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहै। दोहरा जब आए सुप्रभ को भयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते समहू कहत सुनाए। कबे बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो कोटिक विष्णु महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेस। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। सुर्ग बास रघुवर करा।

कियो रघुबर कथा पर संग साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा पर साद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आनयो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री इस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस

जिस मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना सिफत खसम दी नूर अरसह पुरसाह चट्टी तुद डिठे सचे पाते सा मल जन्म जन्म दी कट्टी तुद डिठे सचे पाते सा मल जन्म जन्म

सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गुआईया कर शांत सुख मन आए वस्या जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरु वेटो जिस दियां एह वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कलाजित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारे

मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद घर मान महता तेजी अपना आप जर सर्व कला पर पूर दिसे जत